रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख तो बस समझ जाओ।

क्या कहा?

0: शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

किस्से, प्यार मोहब्बत के किस्से बेकार हुए, जब देखा तो दिल के टुकड़े हजार हुए।

0: आप अपने बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। मानव भारती स्कूल देहरादून में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें। मानव भारती स्कूल CBSE से संबद्ध 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के साथ खेल, कला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। हम आपसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का वादा। एडमिशन की सीमित सीटें हैं, आज ही संपर्क कर सकते हैं। मानव भारतीय स्कूल, डी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। हमारा फोन नंबर है 7455088122।
1: आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जिशान अली जी से, और आप रिमोट सेंसिंग एवं GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल हैं। वर्तमान में आप WII में सेवारत हैं।
2: रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है, मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं पहुंचा हूं WII भारतीय वन्य जीव संस्थान। यहां पर मैं मुलाकात कर रहा हूं डॉक्टर जिशान अली जी से, और आप GIS टेक्निक पर काम करते हैं, गंगा संरक्षण में आपकी एक बड़ी भूमिका है। आपका स्वागत है रेडियो केदार।
3: नमस्कार।
2: आज हम बात करने वाले हैं GIS की। GIS मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। गंगा नदी के संरक्षण में, गंगा प्रहरी अभियान में GIS का क्या रोल है, इसमें करियर की क्या संभावनाएं हैं और इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से आपसे बात करेंगे। सर, सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, पढ़ाई है और WII से जुड़ने की जो जर्नी है।
3: मेरा जो स्कूल और कॉलेज है वो कोलकाता से किया था। वहाँ पे मैंने BSc कंप्लीट किया था जूलॉजी ऑनर्स में। उसके बाद वेस्ट बंगाल के ही बर्धमान यूनिवर्सिटी से मैंने MSc कंप्लीट किया है, जो कि एनवायरमेंटल साइंस में है। वहाँ पे ही मेरा स्पेशलाइजेशन हुआ था रिमोट सेंसिंग और GIS में MSc के दौरान। उसके बाद मुझे लगा कि इस विषय के बारे में मुझे और थोड़ा जानने का इंटरेस्ट था, रुचि था, तो इसलिए मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो देहरादून में स्थित है वहाँ पर आया, वहाँ पर पढ़ाई किया और फिर मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में आया, काम किया। ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशंस के लिए पहले मैं इंस्टीट्यूट में आया था, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन प्रोजेक्ट जो है उसमें मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैं वही काम का कंटिन्यूएशन किया मध्य प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। फिर मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में आके इस गंगा कंजर्वेशन का जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसके साथ जुड़ा। फिर मैं उस पर काम कर रहा हूँ और इस यहाँ पे काम करते करते मैंने अपना PhD जो है वो भी कंप्लीट किया इस इंस्टीट्यूट से, और मेरा एफिलिएशन सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से था। तो उसके बाद फिर इस काम के साथ मैं और जुड़ता चला गया और इस सब्जेक्ट के साथ, और सिर्फ इस सब्जेक्ट ही नहीं, इसके जितने भी सारे कंपोनेंट्स है उसके साथ हमारा एक बहुत बड़ा टीम है जो फील्ड में काम करता है, लेबोरेटरीज में काम करता है, और स्टेक होल्डर्स, स्थानीय लोग, इनके साथ मिल के जुड़ के गंगा नदी, उसके सहायक नदी, उसके पूरे बेसिन एरिया में जो नदी है उसका संरक्षण, उसमें जो जलीय जीव पाए जाते हैं उसका संरक्षण, उसके हैबिटेट्स के संरक्षण, इस संरक्षण के लिए जो काम है उसके साथ मैं अपने आप को जोड़ पाया।
2: गंगा नदी के संरक्षण में, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में GIS का क्या रोल है? सर,
3: GIS का मतलब ये है, इसका हम रिमोट सेंसिंग के साथ जुड़ेंगे इसको। रिमोट सेंसिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी अर्थ ऑब्जेक्ट के आसपास ना जाके एक दूरी से उसके बारे में जानकारी लेना, इसी को ही रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। जब वो जानकारी हमारे पास होता है तो उसका क्वांटिफिकेशन के लिए हम जो तकनीक का यूज करते हैं उसको GIS बोलते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे प्रयुक्ति आज अवेलेबल है। हम सैटेलाइट इमेजेस कुछ होते हैं जिसके जरिए ये काम कर सकते हैं, कुछ इमेज हम लोग ड्रोन के जरिए खुद ले सकते हैं। वो इमेज लेने के बाद, चाहे वो सैटेलाइट का हो चाहे वो ड्रोन का हो, हम लोग उसको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करके लेबोरेटरी कंडीशन में उसका एनालिसिस करते हैं, और ऐसे करके हम उस इमेज के जरिए इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जिसके बारे में हमें नदी में रहने वाले जो जलीय जीव है उसके आवास स्थल इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो ऐसे करके ये तकनीक हम लोग उपयोग करते हैं नदी के।
2: सर, जैसे कि गंगा प्रहरी अभियान है, गंगा प्रहरी अभियान का जो मूल स्वरूप है, जो मैं समझ पाया हूँ, वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट, लोगों से जुड़ाव। क्योंकि हम गंगा के संरक्षण के लिए, उसकी जो जो जलीय जीवन है उसके संरक्षण के लिए, आजीविका संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हम गंगा प्रहरी अभियान को चला रहे हैं। तो जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है, जो गंगा प्रहरी अभियान है, उसमें जीआईएस की क्या भूमिका है?
3: सर, कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए जीआईएस का रोल कुछ ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, चाहे वो एक राज्य हो, एक जिला हो, एक तहसील या ब्लॉक लेवल पे हो, जब हम गंगा प्रहरी बनाते हैं और ऐसे ही करके जब हम लोग एक स्टेट में या पूरे गंगा बेसिन में उसका विस्तार को जानना चाहते हैं, तो कौन से जिले में, कौन से ब्लॉक में कितने गंगा प्रहरी हैं, इसका हम मानचित्रकरण कर सकते हैं, जो कि हम करते भी हैं। जब हम कोई भी एजेंसी के साथ बात करने जाते हैं या उनको ग्राउंड लेवल पे काम करना करने की ज़रूरत है, वहाँ पे गंगा प्रहरी का एंगेजमेंट उनको चाहिए होता है, तो एक होलिस्टिक पिक्चर हमें मिलता है कि पूरे बेसिन में, पूरे स्टेट में कहाँ पे गंगा प्रहरी मौजूद हैं, उनका एक्सपर्टीज क्या है। तो इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। इस एट्रीब्यूट को हम लोग जब उसमें भरते हैं तो उस एट्रीब्यूट के तहत हम लोग फिल्टराइजेशन कर सकते हैं और हमें मिलता है कि कहाँ पे गंगा प्रहरी का नंबर कितना है, उनका एक्सपर्टीज कितना है, कौन कौन से जगह पे वो लोग लोकेटेड है। तो ऐसे करके हम लोग इसका डेटाबेस भी बनाते हैं और मैपिंग भी करते हैं।
2: नदी का जो इकोसिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को जब आप उसकी मैपिंग करते हैं तो क्या उसकी लिमिटेशंस होती हैं, क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं?
3: सर, जब हम मैपिंग करते हैं, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, जब हम इमेज कलेक्ट करते हैं तो इमेज कलेक्ट करने के समय में बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। जैसे जो सैटेलाइट इमेजेस हम यूज़ करते हैं, वो सैटेलाइट इमेज कुछ हाई रेजोल्यूशन होता है, कुछ कोर्स रेजोल्यूशन होता है। जो हाई रेजोल्यूशन इमेज होता है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो उसका जो एरिया है, कवरेज एरिया है, वो बहुत छोटा होता है। और जब हम कोर्स रेजोल्यूशन डेटा यूज़ करते हैं तो उसका एरिया बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो डेटा प्रोसेसिंग है वो यूनिट हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, अगर हम हाई रेजोल्यूशन डेटा यूज़ कर रहे हैं तो। दूसरी बात ये भी है, हाई रेजोल्यूशन जो इमेजेस हैं वो हमेशा फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, उसको हमें परचेस करना पड़ता है, जिसके लिए हमें कुछ फंडिंग की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा फंडिंग की ज़रूरत है। तो ये हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज़ करने का अच्छाई है और उसके लिमिटेशंस है। कोर्स रेजोल्यूशन इमेज जब हम यूज़ करते हैं वो नॉर्मली फ्रीली अवेलेबल होता है, उसको खरीदना नहीं पड़ता है हमें, तो ये उसका अच्छाई है। और उसका लिमिटेशन ये है कि उसका जो बारीकियां हैं, जिसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं, वो बहुत कम होने के कारण बहुत सारे समय उसमें बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन हमें ग्राउंड लेवल से चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलता है। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ता है इस काम।
2: वो क्या प्रक्रिया है सर, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर?
3: सर, इसके लिए हमारे यहाँ पे जो लेबोरेटरी है उसमें एक टीम काम करता है, लगभग 7-8 लोगों का एक टीम है जो इस प्रक्रिया के पीछे काम कर रहे हैं, और एक फील्ड टीम हमारा है जो डेटा कलेक्शंस करते हैं फील्ड जाके मौके पे। तो यहाँ पे काम कुछ ऐसा होता है कि जब लोग फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाके हम कहीं से भी डेटा कलेक्ट करके आ रहे हैं ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए जो स्टेट एजेंसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनसे हमें परमिशन चाहिए होता है उस जगह को एक्सेस करने के लिए, उस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो अगर ये परमिशन हमारे पास नहीं होता है तो हम जाके उस एरिया में फील्ड नहीं कर सकते। तो ये कुछ रेगुलेशंस आ जाते हैं जब हम फील्ड करते हैं। जब डेटा को हम कलेक्ट करके लेके आ जाता है हमारे लेबोरेटरी कंडीशन में और वहाँ पे हम मैपिंग के काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। जीआईएस के तौर पे ही ये रेगुलेशंस हैं, जैसे कि नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी है। तो हम लोग कोई भी डेटा को यूज़ कर रहे हैं, उस डेटा का एक मिनिमम मैपेबल यूनिट हम लोग बोलते हैं तकनीकी भाषा में, उसके नीचे जाके हम मैपिंग नहीं कर सकते हैं। कोई भी एरिया के लिए नॉर्मली 2.25 हेक्टेयर एरिया के नीचे हम लोग मैपिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पॉलिसी हमें रोकता है वहां पे। जब डेटा शेयरिंग की बात आती है वहां पे भी नेशनल डेटा शेयरिंग पॉलिसी मौजूद है हमारे देश में, तो जब डेटा शेयरिंग कर सकते हैं वहां पे भी कितना डेटा हम शेयर करेंगे कोई एजेंसी के साथ उसमें भी रेगुलेशंस है, तो उस रेगुलेशन को मानते हुए हम लोग काम करते हैं, चाहे वो डेटा कलेक्शन हो, डेटा का प्रोसेसिंग हो या डेटा का शेयरिंग हो।
2: जैसे कि सर आपकी टीम फील्ड में जाती है तो फील्ड में जाने से पहले भी जीआईएस होता है, तो क्या क्या चीजें आप उसमें देखते हैं कि जो आप, मैंने सुना है कि आप एक गाइडलाइन भी तैयार करते हैं फील्ड में जाने से पहले, तो क्या कई बार ऐसा भी होता है कि जब फील्ड में टीम पहुंचती है तो स्थितियां कुछ और होती हैं, जो जो जानकारी आपको मैपिंग से मिली है उससे भिन्न स्थितियां होती है, क्या कई बार ऐसा भी होता है सर?
3: होता है बिल्कुल, क्योंकि जब हम लोग कोई भी कोई एक जगह पे जा रहे हैं, नॉर्मल आज के तारीख में मैं अगर बोलूं तो हमें कहीं पे भी जाना है तो जाने के पहले हम लोग मोबाइल पे गूगल मैप है तो वहां पे देख लेते हैं कि कितना दूरी पे है, वहां पे कोई ट्रैफिक जैम तो नहीं है, ऐसे करके हम देख लेते हैं, तो हमें एक प्रायर इंफॉर्मेशन की जरूरत होता है। तो हम लोग जब नदी में जाते हैं तो नदी के बारे में कोई ऐसा जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करते हैं उस जगह पे कुछ ग्रेड्स या कुछ स्ट्रेचेस हम लोग पहले से ही स्पेसिफाई करते हैं ताकि उस जगह पे जाके हमारा जो फील्ड टीम है वो फील्ड टीम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचे जहां पे पर्टिकुलर एनिमल के बारे में, उस एनिमल के हैबिटेट के बारे में, अगर कोई एक्वाटिक प्लांट हो तो उसके वासस्थल के बारे में हम लोग जानकारी पहले से ही दे सकते हैं। वो एक प्रायर आइडिया है कि लोग फील्ड में जब पहुंच रहे हैं वो जो 50 या 100 किलोमीटर के स्ट्रेच है उस स्ट्रेच में उनको कहाँ पे जाना है जी। तो वो 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर के ऐसे स्ट्रेच में उनको पहुंचने के बाद कौन से जगह पे वो सैंपलिंग कर सकते हैं वो एक आइडिया, एक ग्रिड हम लोग पहले से बना देते हैं। फील्ड में जाने के बाद उनका डिसीशन होता है कि उस जगह पे जाके वो कहाँ पे सैंपलिंग का काम करेंगे या उनका जो मॉनिटरिंग का काम करेंगे। तो ऐसे करके फील्ड जाने के पहले एक प्रायर इंफॉर्मेशन फील्ड के बारे में हम लोग रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का यूज करके उनको देते हैं।
2: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार और आज हम बात कर रहे हैं जिशान अली सर से। आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं गंगा प्रहरी अभियान के और गंगा प्रहरी अभियान के तहत गंगा के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। एक ये एक जन आंदोलन बन गया है, इसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, जो गंगा बेसिन एरिया में रहने वाले लोग हैं वो इस अभियान का हिस्सा बने हैं और ये अभियान केवल गंगा का संरक्षण ही नहीं कराता है बल्कि आजीविका से भी जोड़ता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जीआईएस टेक्निक पर। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गंगा का 2525 किलोमीटर का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके अलावा सहायक नदियाँ 11 राज्यों में, 5 राज्यों से तो गंगा होकर गुजरती है, 11 राज्य बेसिन एरिया
3: उसके सहायक नदियाँ,
2: सहायक नदियाँ हैं
3: बिल्कुल,
2: इनमें जलीय जीव और जो वाइल्ड एनिमल्स वो सब इससे ही जुड़े हुए हैं, तो जो उनका हैबिटेट उसकी जो मैपिंग आप करते हैं उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है।
3: सर इसमें जो है ये गंगा नदी, उसके सहायक नदी, शाखा नदी, ये सब मिला के इसका बेसिन एरिया बनता है और ये बेसिन एरिया की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग मतलब इंसान ही नहीं रहते हैं, ये बहुत सारे प्रजातियों का घर है
2: जी।
3: तो उसका मैपिंग हम लोग करते हैं इस कारण से कि पहले कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रजातियां पाए जाते थे और आज के तारीख में अगर हम बात करेंगे तो कौन से जगह में या तो उनका विस्तार हुआ है या तो उनके कुछ लिमिटेशंस आए हैं। तो यहां पे बात आ जाती है इसके हैबिटेट मैपिंग की
2: जी।
3: तो नदी में बहुत सारे चैलेंजेस आज हम लोग कह सकते हैं कि जो नदी का प्रवाह है वो फ्री फ्लोइंग नहीं है, बहुत सारे डैम्स एंड बैराजेस हमारे ज़रूरत के कारण बनाए गए हैं जहाँ पे पानी को हमारे हिसाब से, इंसानों के हिसाब से रोका जाता है या छोड़ा जाता है। तो जो वासस्थल बनता है या हैबिटेट्स बनते हैं वो कभी कभी डैम्स के या बैराजेस के ऊपर के हिस्से में भी बनता है, कभी कभी नीचे के हिस्से में भी बनता है, और जो जलीय जीव हैं वो अपने हिसाब से उसको अपना घर मानता है, मगर हमारे जरूरत के हिसाब से, खास करके जब मानसून के समय पे हम लोग पानी छोड़ देते हैं उस डैम्स या बैराजेस से, तो जो हैबिटेट्स जलीय जीव बनाए हैं उनको नहीं पता है कि कब हम पानी छोड़ेंगे, कब हम पानी रोकेंगे, वो सब वॉश आउट हो जाता है। तो ये ऐसे ही कुछ चैलेंजेस हैं जो हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन करता है। कुछ पॉल्यूशन लोड हैं जो उस हैबिटेट को चैलेंजेस का, जिसके कारण चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे शहर जो आज बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नदी जो है वो सिर्फ एक, उसके दो बैंक के बीच में नहीं बहता है, उसका एक रिवरस्केप है, उसके आसपास के एरिया भी उसके हैबिटेट्स में आते हैं, उसमें फ्लड प्लेन्स है, उसमें आर्द्र भूमि है जिसको हम वेटलैंड बोलते हैं। तो ये सब जगह में भी रेगुलेशंस हैं। तो जब हम कोई बड़े शहर के पास जाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि बड़े शहर का जो विस्तार है वो कहीं ना कहीं फ्लड प्लेन में भी आ जाता है, वहां पे भी घर बनते हैं, वहां पे भी एग्रीकल्चरल एरियाज का विस्तार है। ये सब होने के कारण वो सब जो एरिया जिसको हम हैबिटेट बोलते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स या प्लांट्स के, वो सब एरिया चैलेंजेस के सामना आज कर रहे हैं। तो इसका मैपिंग हमें करना होता है कि कहाँ पे ये हैबिटेट्स विस्तार हुआ है, बढ़ा है, कहाँ पे वो हैबिटेट्स कम हो गया है। तो यही चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है।
2: डॉल्फिन के जो कंजर्वेशन की जो एक कवायद चल रही है, उसको बचाने की एक मुहिम चल रही है, उसमें जो जीआईएस का क्या रोल है सर?
3: सर, डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो हम लोग देखेंगे ज्यादातर जहां पे पानी का गहराई बहुत ज्यादा अवेलेबल है, पानी का वॉल्यूम जहां पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और जहां पे एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस, इंसान के द्वारा किए हुए जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो उसका मात्रा कम हो, ऐसे एरिया में ही ज्यादातर ये डॉल्फिन पाए जाते हैं। तो ऐसा एरिया पूरे नदी के क्षेत्र में कहां कहां पे मौजूद है, इसमें हम जो बात कर रही है तकनीकी भाषा में हमारे बहुत सारे लेयर्स हैं। मैंने गहराई की बात किया, डेप्थ, मैंने पानी की मात्रा की बात किया, मैंने डिस्टर्बेंसेस की बात किया, ये बहुत सारे लेयर्स हैं हमारे पास। जब वो एक साथ हम लेयर्स को इकट्ठा करते हैं तो वो तीन या चार या पांच लेयर्स की मौजूदगी में ऐसा एरिया कहाँ पे मौजूद है जहां पे डॉल्फिन मिलने का चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होता है, वो एरिया को जानने के लिए हमें हेल्प करता है ये रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक। तो इस तकनीक का यूज करके कहां पे हैं वो तो हम फील्ड में जाके पता कर सकते हैं कहां पे हमें डॉल्फिन दिखा, जहां पे हमें नहीं दिखा उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे डॉल्फिन हो नहीं सकता है। तो जहां पे नहीं दिखा वहां पे होने का प्रोबेबिलिटी कितना है,
2: संभावनाओं पर
3: संभावना कितना है, उसको जानने के लिए हमें ये तकनीक यूज करना है।
2: सर, जैसा कि अभी हाल में ही उत्तराखंड में कुछ आपदाएं हुई, धराली में आपदा आई
3: जी,
2: तो क्या उसको भी जीआईएस टेक्निक से पहले कभी देखा गया होगा या इस तरह का आकलन भी होता है सर उसमें?
3: बिल्कुल होता है सर, हम लोग कुछ प्रेडिक्शन मॉडल्स भी करते हैं, बट वो प्रेडिक्शन मॉडल किया जाता है जो आज के तारीख में स्थिति है उसके, वही उसका बेस होता है। कुछ क्लाइमेटिक डेटा अवेलेबल होते हैं, कुछ ग्राउंड डेटा अवेलेबल होते हैं, उसके कुछ लैंडफॉर्म डेटा, कुछ लैंड यूज डेटा, कितना बारिश हो रहा है या पानी का रास्ता क्या है, ये सब डेटा जब हमारे पास अवेलेबल होता है तो उसको लेके हम लोग, या यहाँ पे कितना ह्यूमन हैबिटेशन या सेटलमेंट हम जिसको बोलते हैं उसका एक्सपेंशन, वो जो बढ़ रहा है वो ऐसा एरिया में तो नहीं बढ़ रहा है जो हमारा नदी का प्रभावित क्षेत्र है, तो उस एरिया को देखते हुए ये प्रेडिक्शन हम करते हैं कि कहाँ पे अगर कभी ऐसा कोई डिजास्टर आया तो कौन कौन से एरिया उसके प्रभावित क्षेत्र में आएगा। तो वो एरिया का हम लोग प्रेडिक्शन भी करते हैं, मैपिंग भी करते हैं, और ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से उत्तराखंड के जितने भी एरिया है, सिर्फ उत्तराखंड ही क्यों, हमारे ये पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी सारे एरिया हैं और जितने भी सारे नदियां हैं उसका जोन भी ऑलरेडी डिमार्केटेड है कि कहां कहां पे ये आपदा अगर हुआ तो उसका प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा एरिया होगा।
2: बिल्कुल सही जानकारी सर आपसे मिल रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपसे एक ऐसी टेक्निक पर बात कर रहा हूँ जिसका सामना अक्सर आम व्यक्ति से नहीं होता है और वो एक टेक्निक है जो बताती है, अनुमान लगाती है कि यहाँ पर ये संभावनाएं हो सकती हैं, यहाँ ये खतरा है, यहाँ ये चुनौतियाँ हैं और इस पूरी जो गंगा के संरक्षण की जो मुहिम है उस मुहिम में इसका एक अहम रोल है। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि पॉलिसीज पे बात की, आपने लॉ पे बात की,

0: तो क्या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वायलेशन हो जाता है? कई बार
1: होता है, मैं जब हम काम करते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हम लोग उस लॉ को हमेशा उसका एप्लीकेशंस करते हैं, कभी कभी वायलेशंस भी होते हैं, बट उसको कहीं पे भी डिलीवर करने के पहले हमारा जो टीम है उस वो टीम इस काम को अच्छे तरीके से चेक करते हैं। जहाँ जहाँ पे रेगुलेशंस मौजूद हैं उस रेगुलेशंस को हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके तहत उसके दायरे में रह के ही हम लोग ये काम करें, खास करके डेटा कलेक्शन के दौरान, मैपिंग के दौरान हम लोग उस काम को रेगुलेशंस के अंदर रह के करने की कोशिश करते हैं।
0: बहुत सही आपने बताया सर। एक जानकारी और मैं चाहूँगा आपसे कि अब हम बात करते हैं करियर पर, कि इसमें करियर की संभावनाएं क्या हैं। यदि कोई युवा इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या है, उसके लिए एजुकेशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे।
1: सर हम लोग बात कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक पे। ये एक टूल है, ये टूल सीखने के लिए कोई भी व्यक्ति इसको सीख सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके बारे में पढ़ाई कराता है। देहरादून में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, उस पर रिमोट सेंसिंग जीआईएस का पढ़ाई होता है, और पूरे भारत में बहुत सारे जगह है, विश्वविद्यालय है, इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे इसके पढ़ाई होता है। मगर जीआईएस का एप्लीकेशंस बहुत सारे फील्ड्स में होते हैं। हम लोग अपने एनवायरमेंटल या नेचुरल रिसोर्सेज के फील्ड हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के फील्ड हैं, अगर इसमें इसका उपयोग करना है तो जलीय जीव, उसका हैबिटेट्स, वो कहाँ कहाँ पे उसका विस्तार है, रिवर्स, रिवरस्केप, इसके बारे में अगर हमारा पहले से जानकारी होगा, उस सब्जेक्ट के बारे में अगर हमारा नॉलेज होगा, तो हम लोग ये जीआईएस तकनीक और उसको हमारा ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, खास करके फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये दोनों सब्जेक्ट को हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं।
0: प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि जैसे एजुकेशन क्या होनी चाहिए सर, जैसे स्ट्रीम
1: इसके लिए सर जो बायोलॉजिकल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये और कुछ कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब्जेक्ट के बैकग्राउंड के लोग और ऑब्वियसली जीआईएस सर रिमोट सेंसिंग सब्जेक्ट के बैकग्राउंड के लोग जो ये सब्जेक्ट के नॉलेज रखते हैं, उस नॉलेज के साथ हम लोग इस सब्जेक्ट को सीख सकते हैं। और अभी दो साल पहले हमारे ही इंस्टीट्यूट में फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में मास्टर डिग्री कोर्स एक शुरू हुआ है, जहाँ पे जो एक ऐसा लौता कोर्स है भारत में, जिस कोर्स के अंदर जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी, ये सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाया जाता है। ये कोर्स फुल्ली फंडेड है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भारत सरकार के द्वारा, और अभी हम लोगों के पास अभी फर्स्ट बैच है इस कोर्स को जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आगे जाके भी इस कोर्स में स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं और इसमें इस सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई कराया जाता है।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है युवाओं के करियर के हिसाब से कि आप अपना इसमें अगर जीआईएस टेक्निक में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन नियमों को और इन क्वालिफिकेशंस को फॉलो करना होगा। सर एक आजकल एक दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना सहयोगी होता है आपके इस काम में?
1: सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई रेजोल्यूशन इमेज रिमोट सेंसिंग, ये एक नया तकनीक है जो आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पालन कर रहे हैं, खास करके इस फील्ड में काम करने के लिए। आगे जाके उम्मीद ये है कि इसको यूज करके हम लोग नदी के जो बायोडाइवर्सिटी है इसके बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और कर सकेंगे। हम लोग कुछ मात्रा पे आज कर रहे हैं, आगे जाके इसको और अच्छे से करेंगे, मगर इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो कुछ ऐसा है कि हम लोग जब इसका यूज़ करते हैं तो अभी हम लोग छोटे एरिया में पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए इस तकनीक का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिमिटेशंस ये हैं कि जब बड़े एरिया में हम लोग इसको यूज़ करने के लिए जाते हैं तो इसके कुछ लिमिटेशंस आते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली इसको यूज़ करने के लिए ड्रोन इमेज का यूज़ करते हैं, तो वो एक छोटे एरिया को ही हम लोग ड्रोन इमेज के जरिए देख सकते हैं। बड़े एरिया में ड्रोन इमेज को यूज़ करने के लिए हमारा मैन पावर

0: पर हमारा जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स वो बहुत ज़्यादा होता है। उम्मीद है कि इसमें काम हो रहा है, बहुत तेजी से इसका जो उपयोग हो वो हो रहा है। आगे जाके इस तकनीक का हम लोग यूज कर पाएंगे एक बड़े एरिया में, पूरे गंगा जैसे एक बड़े रिवर और उसके बेसिन के क्षेत्र में हम लोग एक तकनीक को यूज कर पाएंगे।
1: वायलेशन ना हो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है सर?
0: बिल्कुल, जैसे हम लोग जब, मैंने पहले भी कहा, जब हम फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के पास रेगुलेशंस, हमें परमिशन लेनी पड़ती है। जब हम फील्ड में जाके, यदि ऐसा है कि ड्रोन को यूज करके हम लोग इमेज ले रहे हैं तो वहां पे भी रेगुलेशन है, करीबन 120 मीटर के ऊंचाई पे विदाउट परमिशन हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे करके जो लिमिटेशन से वो लिमिटेशन हम लोग करते हैं यहाँ पे, और उसको ही बाद में आके हम एआई के रूप में यूज करते हैं। तो वो सब रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना होता है। यदि हम लोग वहां पे वायलेशन करेंगे तो वो नहीं होना चाहिए, और जो फील्ड टीम हमारा काम करता है, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे एनालिसिस के दौरान हो, लेबोरेटरी में, तो उस समय ये रेगुलेशन को हम लोग खास तौर पे ध्यान रखते हैं।
1: पहली बार जब आप फील्ड में गए, जब आपने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, तो उस समय का कोई जिक्र आप करना चाहें, कोई कोई उस स्मरण करना चाहें, उस बात को याद करना चाहें?
0: मुझे याद है कि हम लोग जब इस काम को शुरू किए थे, जब मैंने इस काम के साथ जोड़ा था, तो मेरा पहला फील्ड था राजा जी नेशनल पार्क के पास, हरिद्वार के पास चीला एक जगह है,
1: जी
0: वहां पे कुछ एरिया में हम लोग फील्ड करने के लिए गए थे। तो वहां पे जाके हम नदी में कैसे रेगुलेशंस होते हैं, कैसे एनिमल्स का हैबिटेट्स होते हैं, वो मैंने पहली बार देखा। मेरे साथ जो फील्ड एक्सपर्ट्स थे उन लोगों ने मुझे समझाया कि इस जगह को हम देखते हैं खास करके एनिमल्स के लिए, जहाँ पे एनिमल मिलता है। हमें दिखा भी था कुछ जगह पे एनिमल, कुछ जगह पे एनिमल तो नहीं था मगर उसको हम हैबिटेट्स बोलते थे। जैसे कुछ जगह पे हम लोगों ने डेप्थ मेजर किया था, कुछ जगह पे हमने जो सैंड बैंक्स था उसको देखे थे। तो वैसे शुरुआत हुआ था, वैसे मैंने नदी को देखा था। मैं नदी को उस समय मैंने देखा था एक वास्तु तंत्र के हिसाब से,
1: सर,
0: कि कैसे उसमें एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से जगह पे पाए जाते हैं, प्लांट्स कौन कौन सी जगह पे प्रोबेबल एरियाज है जहां पे पाए जाते हैं, और कैसे उस जगह को आज बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो शुरुआत था, उसके
1: जैसे
0: बाद फिर
1: जैसे कि
0: इसका
1: आप
0: आपके साथ हम
1: एक
0: जुड़ते गए।
1: टेक्निक के थ्रू आप हैबिटेट्स के बारे में पता लगाते हैं, उसके बिहेवियर को भी मैप करते हैं और बहुत सारी जानकारियां आप मैप करते हैं। जो इंडिजिनियस नॉलेज है, जो स्थानीय लोग जो आपको जानकारियां देते हैं, और आपका एक साइंटिफिक नॉलेज है, कैसे समन्वय बना पाते हैं सर? क्या वो अलग होता है या आपकी जो अप्रोच है वो अलग होती है?
0: इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग जो काम करते हैं उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्थानीय लोगों का जो एक्सपीरियंस है,
1: सर
0: कि उनके एक्सपीरियंस के अलावा हम लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो काम करते हैं वो काम हमने पढ़ाई करके सीखा है और कुछ उसका उपयोग करते करते सीखा है, मगर जो स्थानीय लोग हैं, लोकल कम्युनिटी है, उनका ये दिनचर्या है, उनका जीविका है नदी में रहना, नदी के जो एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, उनके साथ उनका सुबह से लेकर शाम तक बीतता है। तो उनको जो तजुर्बा है, उनको जो नॉलेज है, वो नॉलेज हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण है। हम लोग जब काम करते हैं, चाहे वो जीआईएस रिमोट सेंसिंग टेक्निक का यूज करके हो, चाहे वो फील्ड कंडीशन में जब हम काम करने के लिए जाते हैं तब हो, स्थानीय लोगों का हेल्प हमेशा हम लोग लेते हैं, और उसके उसको यूज करके हम लोग उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां पे हम लोग शायद उनके बिना कभी ना पहुंच पाते। तो ऐसे करके हम लोग स्थानीय जगह पे जाके नदी को देखना वो पॉसिबल होता है सिर्फ उनके काम के लिए। और सिर्फ नदी के बारे में ही नहीं, बहुत सारे नदी के आसपास के बारे में हम फील्ड में जाते हैं, आज नदी का स्थिति देखते हैं, मगर वहां पे जो बुजुर्ग लोग हैं जो बहुत पहले से नदी को देखे हैं और उस समय नदी का स्थिति क्या था, ये सब जानकारी के लिए भी हमें स्थानीय लोगों का बहुत जरूरत होता है। उनसे ही हमें ये जानकारी मिलता है, तभी जाके हम उसके बारे में जो साइंटिफिक एप्लीकेशन है वो कर पाते हैं।
1: अभी आप परसों से इस प्रोजेक्ट के तहत नदी को देख रहे हैं, जलीय जीवों को देख रहे हैं, आसपास का जो हैबिटेट है उसको देख रहे हैं। पूरे इकोसिस्टम को आप देख रहे हैं सर, तो कितना बदलाव आपने देखा है, क्या कुछ बदलाव हो रहा है या अभी भी वही स्थिति है जैसा पहले थी?
0: सर पिछले कुछ सालों में जब से हम लोग इस काम को शुरू किए हैं, नदी में बहुत बदलाव आया है, पॉजिटिव बदलाव ही मैं कहूंगा, क्योंकि जो ये कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं इसके लिए लोग फील्ड जा रहे हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार इसके लिए काम कर रहे हैं, और सिर्फ हम लोग ही नहीं, बहुत सारे स्टेक होल्डर एजेंसीज है जो इस काम के साथ जुड़ के, हम लोगों के साथ जुड़ के ये काम कर रहे हैं। तो इसमें जो नदी का स्थिति है उसमें पॉजिटिव बदलाव आया है, जो उसका हैबिटेट्स है वो हैबिटेट्स में भी बढ़ोतरी आए हैं, जो एनिमल्स पाए जाते थे पहले वो अब और ज्यादा हमें दिखने लगा है, मगर कुछ चुनौतियों का भी सामना है, क्योंकि आज के तारीख में जब भी हम लोग इस नदी को देखते हैं या इस पूरे बेसिन को देखते हैं उसमें बहुत सारा ह्यूमन हैबिटेशंस के एक्सपेंशंस हैं
1: जी,
0: बहुत सारे नदी हैं जिसमें रेगुलेशंस के, मुझे ऐसा लगता है अभी भी कुछ पॉलिसीज बनने की ज़रूरत है
1: जी।
0: और सबसे बड़ी बात, लोगों के अंदर जो जागरूकता है वो बढ़ा है और भी बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हमें ये पूरे काम को जो किया है इसको और अच्छे से करना है और आगे आने वाले पीढ़ी इसके बारे में और जाने, इसके नदी के वास्तुतंत्र के बारे में, संरक्षण में और वो लोग जुड़े, तो ये पूरे गंगा बेसिन के जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बचाव पे हम लोग और ज़्यादा आगे काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही जानकारी सर आपने दी है कि जो बायोडाइवर्सिटी है गंगा रिवर का और उसके आसपास का जो पूरा बेसिन एरिया का, उसके बचाव के लिए अभी भी काम करने की संभावनाएं हैं, उसमें काम किया जा सकता है। और आपने अभी जीआईएस टेक्निक के बारे में आप बता रहे थे कि किस तरह से मैपिंग करते हैं, किस तरह से उसके माध्यम से संरक्षण करते हैं, और खास जानकारी आपने दी है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आपकी पूरी जर्नी को भी हमने सुना और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करते हुए। और अंत में चलते चलते मैं आपसे युवाओं के लिए एक संदेश जानना चाहूँगा।
0: सर मैसेज कुछ ऐसा हम लोग इससे ड्रॉ कर सकते हैं कि जो नदी का संरक्षण है, नदी में जो बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण है, इसमें हम सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं, जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से, स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन से, मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है स्थानीय लोगों का, खास करके युवा पीढ़ी का, क्योंकि वही लोग आगे और इसके बारे में काम करेंगे, उनमें इस तकनीक का यूज़ करके, इसके लिए सिटीजन साइंस एप्लीकेशंस हैं, कोई भी नदी के किनारे जा रहे हैं, नदी का जो स्थिति है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे दे सकते हैं, और जो एजेंसीज हैं जो पॉलिसी बनाते हैं और इसमें काम करके हमारे नदी के संरक्षण को और आगे बढ़ावा देते हैं, तो उसमें उनका कंट्रीब्यूशन के लिए युवा पीढ़ी को और भी आगे आना चाहिए, जिसमें हम लोग इस कंजर्वेशन के काम को और आगे बढ़ा सकते हैं।
1: तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर जिसान अली जी से, और आप जीआईएस टेक्निक पर काम करते हैं, गंगा संरक्षण में आपकी एक बड़ी भूमिका है, और आपने अभी हमें बताया कि किस तरह से हम रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करके, जीआईएस टेक्निक का इस्तेमाल करके गंगा को संरक्षित कर सकते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट कर सकते हैं, और आपका क्या रोल है इसमें, इसके बारे में भी आपने विस्तार से जानकारी दी। सर आपने रेडियो केदार को अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है, मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं पहुंचा हूं WII भारतीय वन्य जीव संस्थान में, यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं सिमरन अग्रवाल जी से। सिमरन जी प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं WII में, और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं, आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं, आप लोगों को बताते हैं कि गंगा के संरक्षण के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सिमरन जी आपका स्वागत है रेडियो केदार। सिमरन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है आखिर में ये है क्या और इससे क्या फायदे होते हैं?
2: अगर हम कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, जो भी उसमें जलीय जीव पाए जाते हैं या जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनसे रिलेटेड ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग होती है। इसमें हम बेसिकली जो लोग हैं उनको ट्रेन करते हैं कि वो वहाँ के जलीय जीव को कैसे बचा सके और अपनी जीविका भी बना सके। सो ये हमारा मेन कंजर्वेशन ट्रेनिंग का गोल होता है कि इट्स नॉट अबाउट साइंस, इट्स अबाउट पीपल, कि हम उनको कैसे ट्रेन करते हैं. जैसे जो उसमें जलीय जीव है, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन हो गया, ऑटर्स हो गए, हमारे स्नेक्स हो गए, और टर्टल्स, घड़ियाल, हमारे मगर की स्पीशीज हो गई, उन सबको कैसे प्रोटेक्ट करना है. अगर उनको जलीय जीव के बारे में पता रहेगा तो तभी उसका संरक्षण भी हो पाएगा. तो यही हमारा मेजर गोल होता है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का.
1: जैसा कि आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं, गंगा प्रहरी को आप इस तरह की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो क्या गंगा प्रहरी के अलावा और भी लोग हैं जिनको आप ट्रेन करते हैं गंगा के संरक्षण के लिए?
2: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं. तो हम अगर हम बात करें अपने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की, तो इसमें हमारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट आता है, हमारे DST वुमेन साइंटिस्ट्स आते हैं, NGOs हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, इवन दो हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग्स देते हैं. तो हमारे बहुत सारे, ये मैंने आपको कुछ ही चंद स्टेक होल्डर्स बताए, हमारे ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे साथ इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स में जुड़े रहते हैं.
1: सिमरन जी, आपको 5 साल हो गए हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, और आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं. आपने देखा होगा कि आपके पास, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग आते हैं, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो सब प्रोफाइल के लिए अलग अलग होता है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक तरह के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एकदम प्रोफाइल चेंज हो गया, तो क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से आप अपनी इस पूरी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं?
2: सर, हमारा सबसे पहले कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले हम देखते हैं हम किस स्टेक होल्डर की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं. तो उससे हमारा उससे पहले होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, जिसमें हमारे डिस्कशंस रहते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं. हम कॉल्स पे करते हैं कि उनकी क्या नॉलेज है, क्या स्किल उनके पास है, क्या स्किल वो लैक कर रहे हैं. तो उसके बेसिस पे हम लोग अपने स्टेक होल्डर वाइज उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो हम उनको पढ़ाएंगे, अगर हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग है या 5 दिन की ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से उनके मॉड्यूल्स अरेंज होते हैं डे वाइज. सो हम सबसे पहले उनको देते हैं प्री ट्रेनिंग फॉर्म, जिसमें उस कुछ क्वेश्चन है रिवर कंजर्वेशन से रिलेटेड, कि उनकी एक्चुअल नॉलेज है क्या, जिसमें हमारे क्वेश्चन हो गए गंगा में क्या जलीय जीव पाए जाते हैं, या हो गया कि पोल्यूशन है रीजन, या क्या रीजन है जिस वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर प्रॉब्लम आ रही है रिवर कंजर्वेशन में. उसके बाद हम लोग वो फॉर्म्स को एनालाइज करते हैं, हमारा एक मेथड होता है जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये उनकी पहले की नॉलेज थी. उसके बाद जब हमारी कंजर्वेशन ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो हम उनको देते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फॉर्म्स, जिसमें हम लोग के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े चेंज किए जाते हैं उसी से रिलेटेड, कि पहले उनकी क्या इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी उसके बेसिस पे, और अब ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है रिलेटेड टू द स्पीशीज कंजर्वेशन, या फिर क्या इम्पैक्ट है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का.
1: सिमरन जी, अभी मैं आपसे गंगा जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है इसके बारे में मैं जानकारी चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि WII से जुड़ने की जो आपकी जर्नी है, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त की है, और कैसे आप WII से जुड़े और इस प्रोजेक्ट से जुड़े, इसके बारे में जानना चाहेंगे.
2: सर, मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप तो देहरादून की ही हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ पे है वसंत विहार में एशियन स्कूल, वहाँ से की हुई है. फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, जो मेरी थी केमिस्ट्री, बॉटनी, जुअलॉजी, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे. उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स की बायोटेक्नोलॉजी में ग्राफिक एयर यूनिवर्सिटी से. उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट में डेजर्टेशन किया था स्ट्राइप डायनास के ऊपर, उनका जेनेटिक फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ा था मैंने, कि वो कहाँ से आए हैं, उनका पूरा उनका हिस्ट्री पैटर्न स्टडी किया था. एंड देन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, वो एक साल मैंने वहाँ इंटर्नशिप किया टाइगर प्रोजेक्ट में. देन फिर मैंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करनी थी और आगे उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था. तो फिर मैं इस कॉम्पोनेंट में ही जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, और तब से मैं यहीं से जुड़ी हुई हूँ.
1: अभी बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं, और आप बच्चों से लेकर और हाई प्रोफाइल जो प्रोफेशन है वहाँ तक के लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं, और अभी आपने बताया कि किस तरह का मॉड्यूल हमारे पास है, हम किस तरह से ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो उससे पहले की हमारी क्या तैयारियाँ होती हैं और क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, इन पर भी आप अभी बात कर रहे हैं. सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस ट्रेनिंग में. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअल जब ट्रेनिंग पूरी होती है तो उसके बाद उसको सस्टेन करना, क्योंकि ट्रेनिंग देना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग के क्या इम्पैक्ट हैं, जिन व्यक्तियों को हमने ट्रेनिंग दी है उनको किस तरह का उससे लाभ मिला है, या हमारे जो जलीय जीव है, जो गंगा है, जिसके कंजर्वेशन के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको कैसे आप रिपोर्ट करते हैं?
2: अगर हम उसकी बात करते हैं सर, तो हमारा जैसे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, तो हमारे कैरी फॉरवर्ड फॉर्म होता है, उसमें हम एक्टिविटीज के लिए उनको एक फॉर्म भेजते हैं थ्रू व्हाट्सएप. उसमें एक लिंक होता है जिसमें वो जो भी कर रहे हैं उसके बाद उसमें हम चेक करते हैं कि वो एक्चुअली उन पे इम्पैक्ट हुआ है या नहीं, वो आगे कुछ कर रहे हैं संरक्षण के लिए या नहीं। तो बट इसमें हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली है, जैसे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें अपने खुद के कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम

0: होकर गंगा गुजरती है, तो अलग अलग कम्युनिटी आपको मिलती है। तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप एक प्रोफाइल के लिए, आप गंगा प्रहरियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल लेके गए और पता चला कि उस स्टेट में कुछ अलग तरह का आपको करना है, तो क्या इस समय कुछ चेंज लाते हैं आप अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में?
1: जी, इससे पहले कि हम क्या चेंज लाते हैं, मैं बताना चाहूंगी हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है वो 5 मॉड्यूल्स में होती है। जो पहला है हमारा बायोडायवर्सिटी मॉनिटरिंग, दूसरा होता है हमारा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स, थर्ड इज हमारा हैबिटेट एंड वेटलैंड मैनेजमेंट, फोर्थ इज हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड फिफ्थ इज हमारा कंजर्वेशन एजुकेशन। सो हमारे 5 मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपनी कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें, हम डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो हम लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि सबसे पहला सूत्र वही है जिससे इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं। तो हिंदी में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज में वहाँ के लोग कंफर्टेबल हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं और हम उनको डे टू डे जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। तो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, रियल लाइफ डिस्कशंस होते हैं, इन टॉपिक्स पे करते हैं तो वो लोग रिलेट कर पाते हैं, जिस वजह से ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग ज्यादा इंपैक्टफुल रह पाती है। तो इस बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं अपनी ट्रेनिंग।
0: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट में और आप WII से जुड़े हुए हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बाल गंगा प्रहरियों को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो किस तरह का खास मॉड्यूल होता है उनको पढ़ाने का, उनको समझाने का, क्या कुछ खास आप TLM का भी इस्तेमाल करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, एक्चुअली अगर हम ना ग्रुप वाइज पढ़ाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी होती है, तो हमारा जूनियर ग्रुप होता है, जैसे हमारे सेकेंड क्लास से लेके सिक्स क्लास तक हो गया, देन हमारे 6 to 8 क्लास हो गया, देन हमारे 9 to 12, तो हमने ऐसे जूनियर सीनियर मिडिल ये करके हमने डिस्टिंग्विश की हुई है और उसी के रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग्स होती है उन बच्चों के लिए। सो इसमें हम लोग बहुत इंटरेक्टिव रखते हैं बच्चों के साथ क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो इसमें हम लोग की पजल्स रहते हैं, क्विजेज रहते हैं, तो हम लोग उनमें उनको गिफ्ट्स भी देते हैं तो वो और इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे पजल्स में, गेम्स में, क्विजेज में। देन हमारे इंटरेक्टिव गेम्स सिर्फ उन्हीं के लिए डिजाइन किए गए स्टूडेंट्स के लिए, तो अकॉर्डिंगली रहता है।
0: बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करते हुए मुझे, क्योंकि बच्चों जो बाल गंगा प्रहरी है उनका जो मॉड्यूल है वो बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, मैं एक जानकारी और चाहूंगा, जैसा आपने स्किल की बात की कि हम स्किल्ड कर देते हैं, तो किस तरह की खास स्किल डेवलप होती है?
1: जी, अगर हम बात करें स्किल की, तो हमने बताया था कि ये इंटरेक्टिव रहता है, एक्सपर्ट टॉक्स होते हैं, हम फील्ड विजिट्स पे लेके जाते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए हमने एक वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट किया था अपने WII में, जहाँ पे उन लोगों को ऐसे उनको ना एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट करनी थी वाइल्ड लाइफ क्राइम सीन, जो उनको प्रिपेयर करती है आगे की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑन ग्राउंड सॉल्व करने में केसेस के लिए, पोचिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड हो गया, तो ऐसे केसेस को आगे वो सॉल्व कर सके, इसलिए हम उनके लिए वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट करते हैं अपने यहाँ और उन लोगों को सॉल्व करना होता है विद क्लूज फाइंड करके कि एक्चुअल में कि पोचिंग हुई है और ये कौन सा स्पीशीज है, तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन उनको सिखाया जाता है। अगर हम बात करें वेटनेरियंस की, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, स्किल करते हैं स्नेक हैंडलिंग में, तो हम उनको लेके गए थे रेणुका जी जू हिमाचल प्रदेश में, हमने और सिखाया गया क्रोकोडाइल्स हो गए हमारे, उनको कैसे रेस्क्यू करना है, उनको कैसे कैप्चर करना है वो सिखाया गया था, तो हम उसके लिए अपने वेटनेरियंस को लेके गए थे गोरखपुर जू। ऐसे हम लोग जो NCC NSS कैडेट्स हो गए, उनको हमने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी है, उनको स्किल किया गया है कि जब वो NCC कैडेट्स अगर वहाँ पे हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे ऐसी सिचुएशंस में, तो इन चीज़ों पर हम उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं।
0: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, WII से जुड़े हैं और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं, और आप अभी हमें बता रहे थे कि जो कंजर्वेशन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग क्या स्टेप उठाते हैं, क्या मॉड्यूल है और किन प्रोफाइल के लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप तो जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आपने MSc बायोटेक्नोलॉजी में की है, उसके बाद आप टाइगर सेंसस से जुड़े, फिर आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग पर आए, तो ये फील्ड थोड़ा सा अलग दिखती है, तो क्या अलग महसूस करते हैं, क्या कुछ खास आपने गेन किया है?
1: अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंसेस की, तो वो मेरा कोर जेनेटिक फील्ड था एंड दैट वाज ऑल लैब वर्क। सो जब मैं इस फील्ड में जुड़ी कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो इसने मुझे बहुत ही एम्पावरमेंट दी है कि इस बेसिस पे मेरा नॉलेज इन्हांस हुआ है कंजर्वेशन के बेसिस पे, क्योंकि मैं कम्युनिटी के लोगों से मिली, ऑन ग्राउंड गई, फील्ड एक्सपीरियंस किए मैंने बहुत सारे, देन मैं एक्चुअली मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ नॉलेज में प्लस मेरे कॉन्फिडेंस में, क्योंकि आई वॉज यूज टू होस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है और सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा किया कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स ने, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट था मेरे ट्रेनिंग वर्क से।
0: जैसा कि आप ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद

0: क्योंकि ट्रेनिंग को सस्टेन भी रखना है। उन्होंने जो सीखा है उसको उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, किस तरह से आप मेजर करते हैं?
1: सर एक्चुअली हमारा जैसे ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हो गया, उसके बाद हम एक मॉडल यूज करते हैं, दैट इज किर्कपैट्रिक मॉडल। सो ये चार बेसिस पे होता है, दैट इज लर्निंग, देन देयर बिहेवियर, देन देयर रिजल्ट्स। सो इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग कि उनको एक्चुअली उनके लिए कुछ यूजफुल था कि नहीं था, देन उनका रिएक्शन क्या था, उनको ये यूजफुल लगी है ट्रेनिंग या नहीं, उन्होंने उसके बाद इसको कुछ अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज किया या नहीं, और ये इम्पैक्टफुल है या नहीं। सो इस ये हमारे किर्कपैट्रिक मॉडल से मेजर किया जा सकता है।
0: ये जानना चाहिए ये मॉडल है क्या, थोड़ा सा सरल शब्दों में।
1: सरल शब्दों में अगर हम बताएं तो सबसे पहले जो हम उनका चेक करते हैं वो है उनका रिएक्शन। उनको ये यूजफुल लगा, हम उनसे डिस्कस करते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग्स यूजफुल लगी हैं कि नहीं। उसके बाद रिएक्शन के बाद आता है रिजल्ट्स, कि कैसे रहे रिजल्ट्स। उन्होंने हमें आगे खुद से आके इंटरेक्ट किया और उन्होंने बताया हमें कि हमने अपने कंजर्वेशन के फील्ड में ये किया, अपने अपनी स्थानों पे जाके ये किया। उसके बाद उनका बिहेवियर में क्या चेंज आया है, वो अपने जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कैसे वो मिले, और उसके बाद उनका इम्पैक्ट क्या रहा। तो ये सब चीजों से बेस्ड होता है।
0: मैं जानना चाहूंगा पहला दिन, फर्स्ट डे जब आप ट्रेनिंग के लिए गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग था। जैसा कि आप ही अभी बता रहे हैं कि मैं तो लैब में काम करती थी और सैम्पलिंग आपका वर्क था, लैब से आप जुड़े थे, लेकिन एक एक दिन आप कम्युनिटी के बीच में आए, तो जो डे वन का जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर जानना चाहेंगे।
1: मेरा जो डे वन का एक्सपीरियंस था एक्चुअली वो बहुत टायरिंग था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपोजर देखा ही नहीं था। तो बहुत सारे लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, बातें करना, उनके बारे में जानना, और वो एक्चुअल में क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो बारे में जानना। तब आपको, जब तक आप खुद जाके कुछ चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम्स एक्चुअल में है क्या। क्योंकि अपने एसी रूम्स में या लैब्स में बैठ के काम करना ईजी है, बट उनके साथ खुद जाके काम करना बहुत डिफिकल्ट है। धीरे धीरे मैं उनको उस चीज़ को इंजॉय करने लगी। सो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था।
0: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, उत्तराखंड में रहते हैं हाइट पर जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम है, लेकिन जब आप मैदानी इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी भी अलग होती है, टेम्परेचर भी अलग है, तो कैसे एडजस्ट करते हैं, और कोई ऐसा वाक्य जिसका आप जिक्र करना चाहें?
1: हाँ, जैसे सर आपने बात की थी कि आपके एक्सपीरियंसेस, तो मेरी जो फर्स्ट कंजर्वेशन ट्रेनिंग थी जिसके लिए मैं गई थी वो थी बिजनौर में, क्योंकि वहाँ पे हमारा हैदरपुर वेटलैंड्स भी पड़ता है उसके पास ही। तो जब मैं बिजनौर में गई थी तो मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दो लोग ही गए थे उस ट्रेनिंग के लिए। सो वहाँ पे जाना, डिफरेंट स्कूल्स में इंटरेक्ट करना, बातें करना, और उसके बाद खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करनी थी हमको। हम लोग जो रोडवेज की बसेज होते हैं उसको लेके गए थे, और मेरे को ऐसे बिल्कुल भी चीज़ों की आदत नहीं थी, तो मेरे लिए वो एक थोड़ा सा कठिन चीज़ रही थी उसको अकेले मैनेज करना सारी चीज़ें। अगर हमें कहीं बात करनी है, हमें कहीं जाना है, तो आपका जो भी लॉजिस्टिक्स है, ट्रैवल है, मुझे सब खुद ही मैनेज करना था। तो मैं वहाँ पे काफ़ी बीमार हुई, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ड्रास्टिक था, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो ये सब चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती जब आप फील्ड में जाते हैं। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है सर।
0: जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, उत्तराखंड और सहित पांच राज्य हैं
1: जी,
0: यहाँ पर से होकर गंगा गुजरती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपके वहीं चलते हैं, तो कोई और खास एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे?
1: अगर हम बात करें तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कफनौल में। हम कफनौल में स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग देने गए थे, बाल गंगा प्रहरी की ही ट्रेनिंग। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई और हमारे सारा सेटअप ऑलरेडी सेट हो रखा था ट्रेनिंग का, स्कूल में बात हो गई थी प्रिंसिपल से, बच्चों के भी, और वो हमारा लास्ट डे था और वो ट्रेनिंग कराना इम्पोर्टेंट था, बट उस दिन हो गई बारिश। तो हुआ क्या, हम लोग बहुत ही निराश हो गए कि हमारा लास्ट डे और वो हम अपनी ट्रेनिंग नहीं करा पाए, क्योंकि हम स्पेशली उसी के लिए गए थे। तो जैसी बारिश रुकी तो हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे, ऐसे हल्का सा आगे घूमने के लिए गए कि देखते ही क्या हो रहा है, बट वहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखे और वो इतने एंथुजियास्टिक थे क्योंकि वो हमसे पहले एक दिन मिल चुके थे। तो उन्होंने खुद बोला कि अरे दीदी, आप लोग ट्रेनिंग नहीं करा रहे हो क्या, क्या हुआ उस चीज़ का? हमने कहा बच्चों आज तो आपका स्कूल बंद हो गया बारिश की वजह से। सो उन्होंने बोला नहीं, हम तो आ सकते हैं, हम तो आएंगे, हम आना चाहते हैं। तो वो ट्रेनिंग से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने बोला कि हम तो आज भी आएंगे जब हमारा स्कूल बंद है। तो वो लोग अपने स्कूल की यूनिफॉर्म्स पहन के, मैंने बोला आप अपने फ्रेंड्स को और बुला सकते हो, उन्होंने कहा हाँ, हम अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे। तो वो सब लोग 15-20 मिनट के अंदर अंदर अपने सारे दोस्तों को लेके, जितने भी आ सकते थे सारे उस स्कूल के बाहर इकट्ठे हो गए उस ट्रेनिंग के लिए। तो मतलब मैं वो देख के हुई कि हमसे छोटे बच्चे हैं वो, बट दे आर इंटरेस्टेड सो मच इन ट्रेनिंग्स रिलेटेड कि उन्होंने खुद एफर्ट्स लिए और बोला कि हम आना चाहते हैं और अटेंड करना चाहते हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा हुआ कि हमारा फ्यूचर अच्छे हाथों में।
0: जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आए, तो किस तरह का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उसके बीच में, एक बच्चों के बीच में, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा, जब उनकी रुचि होगी तभी वो आएंगे। तो किस तरह की रुचि आप उनको डेवलप करते हैं, किस तरह का?
1: सर जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना वो बहुत ही बेसिक होती है इन बच्चों के लिए, कि कछुए का क्या काम है गंगा नदी में, गैंजेटिक डॉल्फिन का क्या काम है, वो कैसे सरफेस पे आती है। तो उनको बहुत उत्सुकता रहती है जानने की कि अच्छा ऐसा होता है। जैसे हम कछुओं के बारे में बताते हैं कि जिसमें सड़े गले मांस मच्छी होता है उसको खा के साफ करते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमने गेम्स डिजाइन किए हुए, जैसे टोटो टर्टल मोटो, मीन्स उसमें टर्टल बनाया हुआ है और उसको अपने घर पहुंचना है, तो वो जो पाथ क्रॉस करेगा उस मेज में उसके बीच में उसके फूड हैबिट्स हैं, मीन्स क्या क्या वो खाता है वो बने हुए होंगे, और कुछ अगर गलत पाथ है तो उसमें वो चीज नहीं खाता होगा या तो रास्ता बंद है। तो ऐसे जब वो गेम्स खेलते हैं तो उन्हें जागरूकता भी बढ़ती है कि अच्छा ये चीज ये खाता है, तो उनसे उनको टर्टल्स का फूड हैबिटेट भी पता चल जाता है। तो ऐसे गेम्स हो गए या फिर पजल्स हो गए जिसमें हमारा पूरा बना हुआ होता है कि गंगा में क्या स्पीशीज हैं, तो जब उसको कनेक्ट करके उनको फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फर्स्ट चीज होती है, अगर किसी को भी कोई चीज मिलती है ना किसी भी चीज करने से उन्हें बहुत खुशी होती है, तो हमेशा उनके लिए ऐसी चीजें रखते हैं, रिवॉर्ड्स रखते हैं, जैसे पेन पेंसिल हो गया, ये उनके काम करेगा, प्लस उनको उत्सुकता रहती है जानने की।
0: जो ये मटेरियल है, क्योंकि जो ट्रेनिंग का जो मटेरियल है, जो सम TLM भी बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसको कैसे आप खुद से इसको डेवलप करते हैं या किस तरह का कोई सपोर्ट आपको मिलता है?
1: सर हम हाँ सपोर्ट मिलता है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, ऐसे हमने भी अपने ट्रेनिंग करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी संस्थान की जो वेबसाइट है उस पर मेंशन हो रखा हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारा क्या फ्रेमवर्क है, क्या ट्रेनिंग करिकुलम है, और उसके ऊपर बुक्स भी छपे हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सारा ट्रेनिंग मटेरियल जनरेट करते हैं, बुक्स जनरेट करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे।
0: तो ये जो, क्योंकि ये बड़ा क्रिएटिव काम है कि जैसा आप अभी बता रहे हैं कि टर्टल का जो है वो पाथ क्या है और क्या क्या उसकी फूड हैबिट्स हैं, ये सब चीज़ें आपने बता रहे हैं। तो ये आप, ये जो पूरा तैयार होता है ये पूरा जो मॉड्यूल, तो ये कहाँ आप, ये WIM ही तैयार होता है या आप लोग कहीं और से सपोर्ट भी लेते हैं?
1: नहीं सर, ये हम WIM ही करते हैं। जो हमारी टीम है ना कैपेसिटी बिल्डिंग, इनका काम यही है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डिजाइन करना इन स्टूडेंट्स के लिए या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए। तो जो हमारी हेड है उनके साथ हम लोग ऐसे डिजाइन बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने कहा इंटरेक्टिव सेशन होते हैं हमारे, डिस्कशन रहते हैं, एंड देन हम उसको एक बार ट्रायल करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि इज इट सक्सेसफुल, वो समझ पा रहे हैं इसके थ्रू उसका हैबिटेट, उसका पैटर्न, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम उसको फिर लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं, फिर और सब स्कूल्स में भी लेके जाते हैं, गेम्स को खिलाते हैं।
0: बहुत शानदार आपने बताया। अच्छा, जो अभी तो हम बाल गंगा प्रहरी की बात कर रहे हैं, जो गंगा प्रहरी हैं उनके लिए क्या, किस तरह का खास डिजाइन करते हैं आप इस ट्रेनिंग मॉड्यूल?
1: सर उनके लिए तो हम लोग ना मेनली हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है, लाइवलीहुड, क्योंकि मेन उनकी जो जीविका है वो उसी से जुड़ी है, तो जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो उससे रिलेटेड हो गया। हमारे फिशरमैन हो गए, बोटमैन हो गए, तो हम उनकी जो बोट्स है ना सर उनको पेंट करवाते हैं जिसमें हमारी गैंजेटिक डॉल्फिन बनी हुई, ऑटर बनी हुई है, और उनको इस स्पीशीज से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब उनके बोट में लोग बैठते हैं ना आके, तो वो उनको बताते हैं कि आपको पता है गंगा में गैंजेटिक डॉल्फिन भी मिलती है, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं कि डॉल्फिन हमारे गंगा में भी मिलती है, तो इसके बारे में बताया जाता है, उसके क्या ही कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, ऑटर्स के बारे में। तो ऐसे जो हमारे गंगा प्रहरी है वो अपनी जीविका भी चला रहे हैं, प्लस कंजर्वेशन के लिए उनको जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को जो उनकी बोट्स में आके बैठते हैं।
0: ये अभी तो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन में मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है, मेडिकल एड भी आता है, तो क्या इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको?
1: अगर हम सर बात करें ना, उनको एज पर्सनल मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, बट जो हम स्पीशीज रिलेटेड है कि उनको हमारा उसका एक टर्म है स्पीशीज इन डिस्ट्रेस, उनके ऊपर कैसे फास्ट रिस्पांस होना चाहिए वो एक टीम बनाई जाती है, जो क्विक रिस्पांस टीम जिसे हम कहते हैं, कि अगर उन्हें कोई स्पीशीज दिखी जो डिस्ट्रेस में है या फंसी हुई है, इंटेंगल्ड है जाल में, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। तो इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग के थ्रू इसका बहुत क्विक और फास्ट रिस्पॉन्स रहा है।
0: तो ये ट्रेनिंग देते हैं या?
1: हाँ, रेस्क्यू एंड रिहैब में सर ये ट्रेनिंग आती है, जैसे मैं कह रही थी कि ये सक्सेसफुल कैसे हुई है, तो ये इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन है, तो जो भी हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हो गए जो देखते हैं एक्चुअली में कि उन्होंने स्पीशीज देखी, जो रोज गंगा के किनारे जाते हैं, अगर उनको कोई दिखता है तो वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, डिपार्टमेंट एक रेस्क्यू टीम भेजती है, तो ये जो पूरा कोलैबोरेटिव नेटवर्क बनता है ये हमारे कंजर्वेशन ट्रेनिंग का एक्चुअली हम बोलेंगे कि जैसे कहते हैं सक्सेसफुल।
0: आपको लगता है कि जो रिलीफ की बात करते हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू की हम बात करते हैं, तो उसका क्या एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है?
1: जी सर, बिल्कुल आ रहा है। हमारे काफ़ी सारे डॉल्फिन्स रेस्क्यू किए गए हैं, जो हमारे रेस्क्यू सेंटर्स है सारनाथ में, वाराणसी में, वो सब बहुत सक्सेसफुल हैं सर, और हम उनको फिर उनको रेस्क्यू करके उनको ट्रीटमेंट देके फिर वापस उनके हैबिटेट में उनको रिलीज भी किया जाता है। इन सब की पब्लिकेशंस भी हैं।
0: ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेनिंग दी, बातचीत की और ट्रेनिंग का सेशन ख़त्म हो गया, नहीं, उसके बाद उसके जो इम्पैक्ट हैं उसको भी आप फॉलो करते हैं। और ये भी बताया आपने कि कैसे मेडिकल जो सपोर्ट उनको मिलता है, कोई अगर कोई मछली जो है जाल में फंसी है, दिक्कत में है, तो उसको भी सपोर्ट करने के जो केस हैं वो लगातार आपके सामने आते रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आप WII से जुड़े हैं और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं, आप उसके एक्सपर्ट हैं। आपने अभी बताया कि बाल गंगा प्रहरियों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं और जो गंगा प्रहरी हैं जो 18 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, और कई तरह के प्रोफाइल हैं, जैसे आपने बताया कि पुलिस ऑफिसर्स हैं और आपका फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बाल गंगा प्रहरी की ट्रेनिंग पर ही खास मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो किस तरह का स्किल डेवलप हो जाता है बच्चों में और किस तरह से आगे बढ़ते हैं और लाइवलीहुड की तरफ?
1: जो हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो उससे पहले हम लोग उनको बेसिक कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं और उनको फील्ड में लेके जाते हैं, हम उनके एक्सपोजर विजिट ट्रेनिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे हमारे WII में एक नेचर ट्रेल है तो उस पर लेके जाते हैं, तो उस पर हम उनको सिखाते हैं कि आपको जब आप जाएंगे जंगलों में तो आपको कैसे चलना है, बहुत शांति मेंटेन रखनी है, क्या ऐसे कपड़े पहनने हैं, नॉइज नहीं क्रिएट करनी है, जैसे बर्ड्स को मॉनिटर कर पाए, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लेक भी है, तो रेजिडेंट बर्ड्स कौन सी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी हैं, बटरफ्लाई की कौन सी स्पीशीज हैं, जो इकोसिस्टम में ट्रीज कौन से हैं, तो इससे उनका ना क्या बोलते हैं नॉलेज इंप्रूव होती है और उन्हीं की इसमें फिर रुचि डिवाइड हो जाती है कि उनको बर्ड वॉचर्स बनना है कि नहीं बनना है, बटरफ्लाई मॉनिटरिंग करनी की नहीं करनी है, तो उसी पे स्पेसिफिकली हर स्टूडेंट अपनी रुचि के हिसाब से वो फील्ड चूज कर लेता है, तो वो आगे जाके लोकल गाइड्स बन सकते हैं और उसके बाद फिर उसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी बन सकते हैं स्पीशीज के बेसिस पे।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है और सिमरन जी, मैं आपसे चलते चलते जानना चाहूँगा कि युवाओं के लिए कोई खास संदेश गंगा के संरक्षण के लिए, गंगा में पलने वाले जो जलीय जीव हैं उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए आपको कोई खास मैसेज है तो प्लीज़।
1: अगर हम सिर्फ अभी संरक्षण की बात करें, ये रिवर कंजर्वेशन की बात नहीं है, किसी भी टाइप का कंजर्वेशन हो, किसी भी स्पीशीज का हो, चाहे हम टाइगर की बात करें, एलिफेंट की बात करें, किसी भी कंजर्वेशन में, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये पीपल के लिए है, इट्स फॉर पीपल, क्योंकि हमें स्किल्ड लोग चाहिए, तो वो जब तक खुद इस कंजर्वेशन को महसूस नहीं करेंगे, फील्ड पे जाके देखेंगे नहीं, खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक ये इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं यूथ को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि उनको खुद निकल के ऑन फील्ड ये खुद महसूस करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए बेसिकली, कि एक्चुअल में कंजर्वेशन ये हमारा खुद का एक इंडिविजुअल एफर्ट है, ना कि गवर्नमेंट का या किसी और संस्थान का या ग्रुप का, तो उन्हें खुद से ये एफर्ट्स लेने चाहिए।
0: तो अभी हम बात कर रहे थे सिमरन अग्रवाल जी से, आप WII से जुड़े हैं, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आप की जो एक्सपर्टीज है वो है कंजर्वेशन ट्रेनिंग। आप हर प्रोफाइल गंगा प्रहरियों से लेकर समुदायों से लेकर आप हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स को भी गंगा के संरक्षण और हमारे जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण की ट्रेनिंग देते हैं, और आपका जो शुरुआत थी वो लैब से थी, लैब से आप कम्युनिटी के बीच में पहुंचे हैं, या आपकी जो एक अच्छी खासियत है वो ये है। और बात करते हुए सिमरन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपने अभी बताया कि ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है, बच्चों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल करते हैं, बड़ों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, किस तरह से वो एम्पावर होते हैं, ये बहुत सारी जानकारियां आपने अभी हमें दी है। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा और रेडियो केदार को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।